0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, लिसनिंग टू कैलगरी मोस्ट पॉपुलर रेडियो, रेडियो सबरंग 94.7 FM।
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
5: हेलो,
6: हाय। अपने मोबाइल पर 1800 रुपए का टॉक टाइम पाने के लिए दबाइए।
5: हेलो,
6: हाय। अपने मोबाइल पर 1800 रुपए का टॉक टाइम पाने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद, आप 1800 रुपए के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। अपने मोबाइल पर आज शाम तक 1800 रुपए का टॉक टाइम पाने के लिए दबाइए 7। धन्यवाद, अब कुछ ही क्षणों में आपके मोबाइल पर मिलेगा 1800 रुपए का टॉक टाइम। चलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 1800 रुपए आपके मोबाइल पर आ जाएं, इसकी पुष्टि करने के लिए दबाइए 3 और कहिए ऊलाला
5: ऊलाला।
6: धन्यवाद, हमें आपका कॉन्फर्मेशन मिल गया।

0: गया है। अगर आप चाहते हैं ये टॉक टाइम आप खुद अवेल करें तो दबाइए 77 और कहिए
1: बे बे बे बे ये
0: धन्यवाद। इसका मतलब आपके अकाउंट में आने वाले हैं 1800 रुपए। 1800 रुपए अपने अकाउंट में चाहते हैं तो अभी दबाइए।
1: क्या
0: दबाऊं? 5। धन्यवाद, हमें आपका कॉन्फर्मेशन मिल गया। हम चाहते हैं कि आप हमारी सर्विस यूं ही अवेल करते रहें। इस सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए दबाइए 4 और कहिए एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
1: एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू?
0: हाँ, चुटकी
1: चुटकी
0: लीजिए। आप पहुंच गए फाइनली अपने 1800 रुपए की तरफ। 1800 रुपए अगर आपके अकाउंट में अभी अभी चाहते हैं आप तो दबाइए 3 और कहिए अपर रोलर लोअर रोलर।
1: अपर रोलर लोअर रोलर।
0: अपर रोलर लोअर रोलर।
1: अपर लोअर लोअर रोलर।
0: तो 3 बार कहिए अपर रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर।
1: अपर रोलर लोअर रोलर।
0: लोलर नहीं, अपर रोलर लोअर रोलर।
1: अपर लोलर लोअर
0: लोलर। लोलर नहीं, अपर रोलर लोअर रोलर। हमें आपको पैसे नहीं देने, आप यहाँ हार चुके हैं।
1: अबे हट, पागल आदमी, दिमाग खराब कर दिया।
2: हेलो
3: हेलो नीति मैम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी क्वेरी जो सॉल्व नहीं हुई थी, आई एम सो सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेल भी मिला था, हमारी तरफ से 3 मेल भी गए थे, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया नहीं अभी।
2: एक्चुअली आई थिंक मेरे पास शायद मेल आया नहीं है, मैंने चेक नहीं किया। फेस्टिवल है ना।
3: ओके आई एम सॉरी। अच्छा मैं ये बता रहा था मैडम, इसमें ज्यादा ना प्रॉब्लम होगी नहीं, तो आज मैंने स्पेशली अपने ब्रांच मैनेजर से कहा है, मैंने कहा निधि मैम का क्वेरी सॉल्व करो यार, उनका फिर वो फंड में अटके हुए हैं।
2: हाँ
3: तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ मैडम, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? अभी 2 एजेंट खाली है, एक सेकंड रुकिए। कौन कौन खाली है? भोलू प्रसाद और एकलव्य और भोलू प्रसाद दोनों खाली है ना। हाँ तो इनमें से मैडम को कोई भी समझा देगा। भोलू प्रसाद को ट्रांसफर कर देता हूँ मैं आपकी कॉल।
2: नहीं, वेट।
3: हाँ जी,
2: एकलव्य सर, आई थिंक आपने एकलव्य किसी का नाम लिया, आप उनको ट्रांसफर कर दीजिए। आई डोंट नो मेरी कम्युनिकेशन सही होगी भी या नहीं,
3: नहीं वो अभी एकलव्य कॉल पे है ना, एकलव्य का कॉल पूरा नहीं हुआ। आप भोलू प्रसाद से बात कर लो ना एक बार, मैं ट्रांसफर कर
2: दूं। नहीं सर प्लीज, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़े और कोई ये हो कि मैम ये शब्द क्या है वो शब्द क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू एकलव्य, आई कैन वेट, इट्स फाइन।
3: एक सेकंड रुको, फिर एकलव्य के लिए थोड़ा सा होल्ड कर लो आप, ठीक है?
2: नो इश्यूज।
3: ओके देख जरा फ्री हुआ एकलव्य? ओहो मैडम, मैं भोलू प्रसाद को ही ट्रांसफर कर देता हूँ क्योंकि एकलव्य की लंबी कॉल चल रही है।
2: मैं
3: वेट करता हूँ। हेलो
2: हेलो
3: हाँ जी
2: हेलो एकलव्य है,
3: बोल रहा हूँ। ये तुम्हारी जो चिट्ठी आई है, एकलव्य ही बोल रहा हूँ, इसमें तुमने किसे पैसे धरे थे इसमें? अच्छा बैंक में जब भी धरो पहले हमें तुम बता दिया करो। अब यू चक्कर यू हो गया कि तुम्हारा जो अकाउंट था ना वो वहां दूसरे के अकाउंट में मिल गया। अब दूसरे के अकाउंट से तुम्हारे फंड वहां में आ गए तुम्हारे अकाउंट में, समझी? तो मैं कल को कर दूं तुम्हारा ये वाला काम।
2: रुके, am I talking to एकलव्य?
3: हाँ जी एकलव्य बोल रहा हूँ। जब तुम इंतजार कर रही, मैं दूसरे कस्टमर से बात कर रहा था, उस बार ने तो भेजा खराब कर दियो, पूरा भेजा खराब कर दियो। मैं कह रहा हूँ भैया चिल्लावे काय को यू का नाम, मेरे पैसे चाहिए। मैंने तेरे बाप के नौकर रखे हैं, कोई बैंक पे है, मुझ पे मोह पे पैसे है तेरे। खैर एक काम करो, तुम अभी कहाँ को धर रही हो तुम? हेलो कहाँ को चले गई, सुन रही हो ना?
2: Excuse me, sir.
3: Yes.
2: Are you sure you're

0: एकलव्य है।
1: और क्या लिख के दू पर्चे पे, एकलव्य बोल रहा हूँ।
0: ओहो एकलव्य जी,
1: हाँ जी,
0: मेरी ना आप जरा कॉल ट्रांसफर कर दीजिएगा भोलू प्रसाद।
1: मैं कर दूँ भोलू को, रुक जाओ।
0: हाँ प्लीज। ओ माय गॉड,
1: Hi, this is Bholu. How may I assist you? Hello.
0: Hello.
1: Hi, this is Bholu.
0: Hello, excuse me.
1: तो नाम
0: Hello.
1: पे जा रही, नाम पे तुम भी जाया मत करो, काम पे जाया करो। हम ना करनी तुमसे बात, से बात कर लो। हम तो नवेद बोल रहे हैं, ऐसी तुमसे रेडियो मिर्चीज है, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था, मुर्गा बना रहे थे तुम्हारा हम।
2: हेलो,
1: मिल गया। इज दैट अश्वनी?
2: हाँ जी।
1: अश्वनी बेटा क्या हाल चाल है? टीना का मैं चाचा बोल रहा हूँ, टीना का चाचा।
2: नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बेटे?
2: बस सर।
1: अच्छा, मेरे को तो बहुत बाद में पता चला, मैंने कहा अश्वनी ने टीना को देखा है। देखो हमारा भी इरादा तो है, मतलब अभी टीना ने पूरी तरह तो हाँ नहीं कर दिया है, लेकिन ये है कि मैं और भाई साहब टीना के पापा हम रात बैठे हुए थे, मैंने कहा यार जो कुछ है ना वो फाइनल अपना निपटाओ आप, है ना, ताकि जल्दी काम हो सके सारा।
2: हाँ जी।
1: और बेटा क्या कर रहे हो?
2: बस कुछ नहीं।
1: बात हो रही है टीना से?
2: नहीं नहीं अंकल, एक दो बार मैसेज किया था, उठाया नहीं।
1: ओ हो, कब किया था बेटे?
2: कल किया था मैंने।
1: कल आपने मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद किया होगा ना?
2: हाँ जी।
1: हाँ तो वो क्लब में थी ना, 2:30 बजे 3 बजे आई है रात क्लब से।
2: 3:30 बजे आई है रात को क्लब?
1: हाँ 3:30 बजे, बल्कि मेरा 4:15, मतलब 3 पूरे हो गए होंगे। तो मैंने कहा चलो आ गई।
2: तो आपने पूछा नहीं उनसे कि इतनी रात में घर आ रहे हैं?
1: अरे मेरे को तो बड़ा गुस्सा था, मैं तो पूछने वाला था, मगर वो 5 लड़के साथ में थे, मैंने कहा यार इन सबके सामने पूछना ठीक नहीं लगता।
2: कितने लड़के?
1: 5 लड़के साथ में थे, मैंने कहा यार घर की बात है, इनके सामने नहीं करनी चाहिए। खैर तुम बताओ बेटा, काम वाम कैसा चल रहा है?
2: काम तो अच्छा चल रहा है।
1: मैं यही सोचा, मैंने कहा किसी दिन मिलूंगा अभी आपसे ना।
2: हाँ जी।
1: उठ गई देखो यही उठ गई महारानी। 5 बजे से ये तो झूम रही है, अभी भी झूम रही है। थोड़े और देर सो जाओ, ठीक है, सो जाओ थोड़ी देर, उतर जाएगी, मैं उठा। हाँ हाँ, तो रोहित मैं ये कह रहा था आपसे
2: कि अंकल अश्वनी नाम है मेरा।
1: अश्वनी, ओ सॉरी, वो पहले वाला याद आ जाता है ना, मैं इसका टीना का। खैर और बेटा काम वाम कैसा चल रहा है?
2: ठंडा चल रहा है, इनकम थोड़ी ठंडी हो रही है।
1: हाँ सबकी ठंडी हो रही है इनकम बेटा, और पैसा आजकल, मतलब अब ये देखो ना, रात मैं ये 10,000 रूपए दिए थे इसको, ये मेरे ख्याल से 2 रूपए ने वापस नहीं लाई है।
2: पार्टी वार्टी में लगाया?
1: नहीं नहीं, हार गई ना, हार गई।
2: हार गई?
1: हाँ जी, मैंने मना किया है, मैंने कहा 2,000 से ज्यादा मत लगाया करो ये बेड जुए में ना, तो 2,000 बहुत होते हैं। और बेटा मम्मी पापा ठीक है?
2: हाँ जी।
1: वह हमारा भी ये है कि जो हो जाए, ये मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं समझता, मैं भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और इतने लाड प्यार से रखा है इसको, आप लगा लो मैं एक दिन से ज्यादा जेल में इसको रहने नहीं देता, मैं तो फौरन जमानत कराता हूँ। मैंने कहा भैया आप जमानत करो इसकी, कितने ही पैसे ले लो, मैं मेरे से नहीं देखा जाता एक दिन से ज्यादा जेल में, मोहब्बत है ना बहुत। और पापा ठीक है? बेटा मेरे चक्कर में रहेगा ना, किसी से शादी नहीं हो पाएगी, ना मैं बोल रहा हूँ तेरी टीना का चाचा, और ना मेरे को कराना रिश्ता, मैं तो आरजे निवेद बोल रहा हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय बेटा, बाय बाय बाय बाय।
0: हेलो,
1: ये प्रिया मैडम बोल रही हैं
0: जी?
1: प्रिया मैडम आप ये कुक ढूंढ रही थी ना, आप पता चला था कि आपको कुक चाहिए?
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, चाहिए, मुझे चाहिए, कुक की जरूरत है।
1: हाँ इसीलिए फोन किए हम आपको, कुक का जो जरूरत था।
0: अच्छा तो क्या नाम है भैया आपका?
1: मनमोहन।
0: मनमोहन,
1: हाँ,
0: पूरा नाम क्या है?
1: मनमोहन प्रसाद।
0: अच्छा हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं?
1: हम बिहार के रहने वाले हैं, पूर्णिया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो बिहार में कहाँ से?
1: पूर्णिया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अभी तो दिल्ली में है, तो पहले पूर्णिया में थे, फिर दिल्ली में काफी

0: ठीक है, एज अ कुक काम किए हैं, इधर नोएडा में भी किए हैं, सेक्टर 44 में, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, और आपका ये ये जो छतरपुर है एक फार्म हाउस, उसमें भी किए हैं।
1: कितने साल से हो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं?
0: यहाँ पे तो मैडम हमारा टोटल तो एक्सपीरियंस आप लगा लीजिए कुकिंग का कोई 11-12 साल का होगा, लेकिन लास्ट जो छोड़े हैं वो 2-2.5 साल किया है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी।
1: तो अभी अभी फ्री हो आप पूरे फुल टाइम?
0: हाँ जी, इसीलिए हम फोन किए हैं कि हम तो फ्री है, हमारा तो शौक भी है खाना बनाना।
1: शौक है तो हाँ। क्या क्या बना लेते हो खाने?
0: जो आप बोलो मैडम, जो आप बोलो।
1: अच्छा, तो नॉनवेज आता है ना?
0: मैडम नॉनवेज नहीं बनाते हैं, नॉनवेज नहीं बनाते हैं ना ही खाते हैं, बस ये थोड़ा है, बाकी जो आप बोलो।
1: हम लोग तो खाते हैं नॉनवेज। अच्छा, आलू पूरी आता है आपको?
0: आलू पूरी अगर पूरी वाला कोई मिल जाए ना तो हमसे पूरी नहीं आता है, आलू तो बहुत अच्छा बनाते हैं, ये अगर पूरी वाला आपको आता है पूरी तो आप बता दीजिएगा, बाकी तो जो आप बोले।
1: अरे भैया मुझे तो आप ही से बनवाना है ना खाना, अगर
0: लेकिन पूरी
1: पूरी,
0: पूरी नहीं आता है, बाकी तो आप कुछ बोलो ना, पूरी कोई बात नहीं है, पूरी का तो मैनेज कर लेंगे।
1: अच्छा, छोले भटूरे आते हैं?
0: छोले भटूरे तो नहीं बनाएंगे मैडम, एक तो उससे गैस हो जाता है बहुत ज्यादा, वो आपके लिए भी कह रहे हैं कि मत ही बनवाइए, बहुत गैस हो जाता है वो, अब ठीक भी नहीं लगता है, हम आपको भी नहीं, इतना तो प्यार करना चाहिए ना जिनके आप बना रहे हैं, बहुत गैस हो, बहुत गैस, पेट खराब है, बाकी तो जो आप बोलो।
1: वो तो ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पाव भाजी आती है वो बना लोगे?
0: ये क्या होता है
1: पाव भाजी भैया? पाव होता है और भाजी बनती है सारी सब्जियों को मिलाकर।
0: ये कहाँ बनता है?
1: ये तो भैया बहुत मशहूर डिश है, और आप तो
0: बनती कहाँ है पाव भाजी, हम तो पहली बार सुने हैं, कहीं बाहर का डिश है?
1: अरे भैया बॉम्बे में तो बहुत मशहूर है,
0: तो बॉम्बे से मंगा लेंगे, जब खाना होगा मूड होगा तो बॉम्बे से मंगा ले, बाकी जो आप बोलो।
1: अच्छा, डोसा बना लेते हो?
0: डोसा बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक
1: एक,
0: हाँ, उसके बाद थकान हो जाता है डोसे में ना, हमको वो हाथ वात ये करने में ना, वो एक से ज्यादा नहीं बना पाएंगे।
1: भैया तीन डोसे तो अकेले मैं ही खा लेती हूँ ना, फिर मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, फिर
0: तो गलती आपका है, तीन डोसे तो वैसे भी ज्यादा है।
1: अच्छा अच्छा भैया एक बात बताओ, आपने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया है?
0: हम डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, हम आपको बताए थे ना, डिफेंस कॉलोनी में किए हैं, छतरपुर में किए हैं, नोएडा सेक्टर 44 में किए हैं।
1: तो वहाँ ये सब चीज नहीं बनाई क्या?
0: ये सब नहीं, बाकी तो जो आप बोलो, सिर्फ ये नहीं बनाया, बाकी जो चीज बोलो आप।
1: अच्छा भैया एक बात बताओ, मीठे में क्या क्या बना सकते हो?
0: मैडम मीठे का तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि शुगर है हमको, तो हम कभी खुद भी नहीं बनाए हैं, तो मीठा तो आप भी अवॉइड ही करिए, आजकल तो शुगर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जवानों में भी शुगर हो रहा है।
1: अरे भैया हम तो मगर खाते हैं ना,
0: हमको शुगर ना हो तो हम जरूर बना देते, बाकी जो आप बोलो।
1: तो भैया आप वहाँ क्या काम क्या करते थे जहाँ पहले थे?
0: हम बताते हैं, हम गए तो एज अ कुक थे, जो पहले दिन हम गए हैं तो जब खाना बनाने वाले थे उससे पहले उनका वो स्पार्क प्लग में स्पार्किंग हो गया, तो हम घबराए, हमने देखा कि यार ये स्पार्क हो रहा है, तो वो पूरा ठीक कर दिया हमने 2 मिनट में। तो वो कह रहे ट्यूबलाइट भी खराब है, तो हम ट्यूबलाइट का भी बदल दिए, फिर बोले कि हमारा कूलर नहीं चल रहा है, वो कूलर का कहा था पीछे एग्जॉस्ट से हमने पेचकस से कस दिया, तो उनको हमारा यू काम इतना ई वाला काम इतना अच्छा लगा, तो एज ए इलेक्ट्रिशियन काम किए हैं 3 साल।
1: अरे भैया चाय की शौकीन हूँ मैं, चाय के बारे में बताओ।
0: हाँ तो चाय पियेंगे, क्यों नहीं पियेंगे, साथ में बैठ के पी लेंगे, हम चाय का हम भी बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है, बहुत शौकीन है। आप बनाते हो चाय?
1: हाँ बनाती हूँ।
0: और पूरी पूरी छोले जो आप पूछ रहे थे?
1: हाँ वो भी बनाती हूँ।
0: तो ढूंढ का रहे हो कुक, जब सब कुछ बना लेते हो, बस ऐश करने हैं और खा के बैठ के खाना है, काम
1: करना,
0: हमको बात ही नहीं करना है, एक चीज बनाते हैं मुर्गा वो बना दिए, खा
1: लिया, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਸ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर।

0: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है। किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 संपर्क करो।
1: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदने तो पहला इत्मीनान नाल किसे प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदने ले ही नहीं बल्कि बेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदने ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइना नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515, 2935 19th Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदन ले हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटीस्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222। रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਸਵਲੀਨ ਜੱਸੜ। ਅੱਜ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨਿਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਪਹੁਜਾ